0: एस रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई इवेंटिम अपोलो हैमरस्मिथ हमारे राम। बुक योर टिकट्स नाउ, विजिट www.eventimapolo.co.uk। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक आर रेडियो।
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
1: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
2: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location,
1: high appreciation
2: in Dubai.
3: अपने business को UK के largest Asian commercial radio network पर advertise करने के लिए call करें. Like our radio sales on 02071321458 या email करें sales@lykamedia.co.uk.
4: Bollywood के legend कलाकार सिर्फ Lyka Gold पर.

0: लाइका गोल्ड पर हर रात की यही रीत, पुराने मगर सदाबहार गीत।
1: चुप चुप चुप चुप चुप चुप चुप

0: है
1: लाइका गोल्ड।
2: The wait is now over. The King of Melody, Kumar Sanu, live in concert. For one night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
0: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
2: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
0: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasan.
2: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education, Embryo Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Leica Radio.
3: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
4: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
3: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
4: गारंटेड
3: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
4: फोन 02085748410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: ताज़ा करें अपनी यादें लाइका गोल्ड के साथ।

में उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई हैं। एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा भवाई हैं। हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोए नान हुक्मे।

मैं विसर ना जाए। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जाणी है नाल चले सब कोए। चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जगले, जे तिस नदर ना आवे।

सुनिए हाथ वैस नानक भक्तां सदा विगास सुनिए दुख पाप का नास मन्ने की गत कही ना जाए जे को कहे पिछे।

होए जेको मन जाने मन कोए मन्ने मार्ग ठाक न पाए मन्ने पत्सियों प्रगट जाए मन्ने मग न चले पंथ मन्ने धर्म सेती सनबंध।

होए लख दरियाओ, कुदरत कवन कहाँ विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख जप असंख भाव, असंख पूजा असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहें उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती।

मूर्ख अंध गोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए।

है साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख है सिर भाव।

तेरे भगत रसाले। होर केते गावन से मैं चितनावन, नानक क्या विचारे। सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई, है भी होश

वाजिब तिस दी वडियाई, जो तिस भावे सोई करसी हुक्म ना करना जाई। सो पातशाह साहब नानक रहन जा।

हत जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी हृदय सिद्ध।

अनाहत जुग जुग एकोवेश आसन लोय लोय भंडार जो कुछ पाया सो एका वार कर कर वेखे सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एकोवेश एक दूजी बोला खोए लख होवें लखवीस लख।

जोर न जुगती छुटै संसार, जिस हथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच न कोए। राती रुती चित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोहन पंच परवान, नदरी करम पवै निशान, कच पकाई उथे पाए, नान गया जापै जाए।

0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
1: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
2: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड
2: विजिट travelhubworld.com
3: चलो जाइए एक नवा सफर पर
4: सिरीन हॉलीडेज अपने पूर्व अफ्रीकाना स्थळोनी मुलाकात लेवा आमंत्रण आपे छे कंपाला नैरोबी मुंबासा जांजिबार आणि दार ए सलाम साथे जिंजा आणि मचिसन फॉल्स
5: बस पैक करो आणि रिलैक्स થઈ જાઓ
4: કેમ કે આપની સફર અમારી સફર છે વધુ માહિતી માટે
5: કોલ કરો દીપ્તિ પંડ્યાને
4: 0116266248 પર વધુ માહિતી માટે લોગ ઇન કરો sirinholidays.co.uk પર
6: લોકેશન લોકેશન લોકેશન
7: ઇન રીઅલ એસ્ટેટ લોકેશન is everything and this one is a winner
6: introducing greens by daniel a premium collection of townhouses and villas
7: located in dubai in a prime location for high appreciation
6: step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium italian furnishings
7: step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community
6: and the best part townhouses and villas greens start from just £711,000
7: to book call our london office on 020-3963-5757 greens by
8: धबकारो
9: स्टारिंग देवेन भोजानी अने आर्जव देसाई इन सिनेमास नियर यू
10: एक बढ़िया कड़क गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो आए हाय मजा आ जाए
11: अरे समझो हो गया रॉयल चाय है ना अब भी बन जाएगी सिर्फ पैकेट खोलो और गर्म पानी में घोल लो चाय तैयार वो भी रॉयल टेस्ट के साथ रॉयल चाय झटपट कहीं भी कभी भी
12: हर क्रंची बाइट में एक खास एथनिक स्वाद हर फ्रायम शेप में है वो बचपन की याद
13: स्नैक टाइम हंगर को बनाए और भी टेस्टी विद जेमिन्स फ्रायम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड यम्मीस्ट फ्लेवर्स लाइक लेमन चिली मिंट मंचूरियन मसाला पेरी पेरी और शेजवान विद बेस्ट क्वालिटी एंड सेम एथनिक टेस्ट
12: जेमिन फ्रायम्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
14: Looking to buy gold, silver or platinum bars in the UK? Visit buybullion24.co.uk for competitive prices, trusted service and secure online buying. For more details, WhatsApp on 073-7522-4418. Start investing with confidence today at buybullion24.co.uk.
15: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEEDSAVER online or in store from stunning gift tins to rasmalai and motichur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
16: At Skylord Cruise and Holidays, we are cruise specialists,
15: bringing you incredible value and unforgettable luxury cruises worldwide.
16: Call today on 01923 883 100
15: or go to skylordcruiseandholidays.com.
16: Book with confidence.
15: We're Atoll protected.
17: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles. Hmm?

0: दिशा सुप्रीम एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस इंडल्ज विद दिशा
1: अवेलेबल एट फल्कन स्टोर्स एंड ऑल इंडिपेंडेंट स्टोर्स नेशनवाइड
2: मंत्रा हॉलीडेज विशेस यू एंड योर फैमिली अ हॉलीडे सीजन फिल्ड विद जॉय लाफ्टर एंड अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स एज यू सेलिब्रेट स्टार्ट प्लानिंग योर नेक्स्ट एडवेंचर विद अस विजिट www.mantraholidays.co.uk और कॉल 0203-773-633 नाउ एप्टा बॉन्डेड
3: मंत्रा हॉलीडेज व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा
4: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy! Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
5: Gold Breakfast with Kajal. Like
4: Star Track of the Hour, sponsored by Star Tours. Coach, Eurostar, your flight. Aap choose karo, apna style. Baki sab, Star Tours experience samhaal leta hai. Visit startours.co.uk.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Ye hai Laika Gold.
0: Laika Gold, traffic and travel.
3: M11 South, usual delays 15 minutes before North Circular Road. The A12 West at Redbridge Roundabout. We've got travel time now of 10 minutes. And the A13 westbound from Raynham to Barking and the Lodge Avenue flyover, 25-minute queues. Newham Way on the A13, it's slowing now for 15 minutes at the Canning Town flyover. And A2 Shooters Hill Road, it's just your usual delays there, 15 minutes west from Blackheath Common to Deptford Bridge. A1 South, we've got queues at the Stirling Corner and the M4 onto the elevated section, 20 minutes from Hayes to Brentford. Heathrow Airport, all flights from the UK and Bahrain still reduced because of the conflict, so check before travelling. And that's the latest traffic and travel.
4: Shout out to the savvy ones tuned in across the UK.
5: Who? Me?
4: Yeah, you. The ones who know a good deal when they see one. Like the house proud who protect their manor from broken branches to burst pipes. The dog walkers who take the lead when comparing pet cover for their pampered pooches. And the drivers with breakdown cover belting out those power ballads. Here's to all of you making smart choices and finding your insurance at
6: Geico.compare.
4: Now that's savvy.
2: Like our gold.
7: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
8: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
7: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
8: गारंटेड
7: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
8: फोन 02085748410।
7: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
9: हिल्लारो अने उम्ब्रो जेवी अक्लेम्ड गुजराती फिल्म्स ना नेशनल एवॉर्ड विनिंग डायरेक्टर अभिषेक शाह पर एक वार लेने आव्या छे एक इमोशनल कॉमेडी।
10: तमार तो जिंदगी छे के फिल्म नी वार्ता।
9: एक यू हार्ट जी कई फील करतु नतु।
11: अरे वार्ता अधूरी छे भाई।
9: बट वन बीट एंड एवरीथिंग चेंज्ड।
12: तमारो हृदय धबकारो चूकी जाय छे।
9: धबकारो स्टारिंग देवेन भोजानी अने आरजव देसाई।
13: लोकेशन अहींना करेला अहींज भोगवाना छे।
9: इन सिनेमास नियर यू।

0: लाइका गोल्ड
1: ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com
2: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड
2: विजिट ट्रेवल हब world.com
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
4: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office. On 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
3: High appreciation.
4: In Dubai.
5: Herald. New world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
6: London Entertainment di sab to vaddi raat aa rahi hai. Four Pillars Entertainments Limited presents ABPD Awards UK 2026. Live performances by Naveen Kundra, Manjeet Bobby, Nikki Sethi, te hor zabardast artists. 9th May, sham 6 baje, The Center Banqueting Suite, South Hall. For tickets call Manjeet Bhamra at 7956-300-367. ABPD Awards UK 2026. Exclusive radio partner Laika Radio Network.
7: For gold, silver and platinum bars you can trust, visit buybullion24.co.uk. Competitive prices, secure online buying and reliable service across the UK. For more details, WhatsApp on 073-7522-4418. Choose buybullion24.co.uk today.
8: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप
9: टेबल पे सिर्फ एक हीरो जयमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स
8: मसालेदार मसाला टैंगी टोमेटो सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर ऑल इन जयमिन्स पोटैटो चिप्स
9: जयमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स देसी स्वैग इन एवरी बैग
10: एक मसालेदार चाय के बारे में सोचते ही बस एक ही नाम याद आए यूनिक मसाला चाय इस सर्दी मजा लीजिए यूनिक चाय के अलग अलग मसाले फ्लेवर्स का सिर्फ गर्म पानी लो और यूनिक चाय के साथ घोल लो सिर्फ कुछ ही मिनट्स में सबकी फेवरेट यूनिक मसाला चाय तैयार
11: भक्ति प्रेम और समर्पण की एक दिव्य कहानी
12: मत जाओ काना क्यों जा रहे हो
13: क्योंकि नियति मेरे बस में नहीं
11: देखिए कृष्णा राधा रुक्मिणी और सत्यभामा की अमर लीला
13: वचन दिया था राधा को निभाना पड़ेगा
11: कृष्णावतारम इन सिनेमाज नियर यू
13: ये बंसी तुम्हारी राधा और मेरा नाम भी
14: आ सितंबर पेरिस मा इतिहास लखाई रह्यो छे
15: बीएपीएस मंदिर नो ओपनिंग अने स्टार टूर्स तमने लई जाई रह्यो छे आ पवित्र यात्रा पर
14: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर्स
15: फ्रांस स्विट्जरलैंड इटली अने जर्मनी साथे
14: दर्शन पण अने यूरोप पण
15: सीट्स जल्दी भराई रही छे आज ज बुक करो स्टार टूर्स साथे
14: कॉल 0208900-2323 द स्टार टूर्स
15: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन
16: दिस ईद स्किप द क्यूज एंड सेव विद अंबाला प्री ऑर्डर बिफोर द 10th ऑफ मे एंड एंजॉय 20% ऑफ योर ऑर्डर यूज कोड अर्ली Saver online or in store from stunning gift tins to rasmalai and motichur laddus. Don't wait, the offer ends on the 10th of May.
17: डिवोर्स या कस्टडी का इश्यू इसे अकेले फेस मत करें कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जल्दी एक्शन लेते हैं अभी कॉल करें 0208-907-2444 आज ही एक्शन ले 0208-907-2444
18: Laika Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Gold Breakfast with Kajal. Laika Gold. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: गुड मॉर्निंग टू यू। रवि शर्मा जी का शो है लेकिन हॉट सीट पर है आपकी अपनी सरिता सबरवाल। कैसे मिजाज हैं आपके? उम्मीद करती हूँ जहाँ भी हैं खुश हैं, खैरियत से और ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। हमेशा तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें, ये दुआ ये प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती आई हूँ और करती रहूँगी। चलिए मैं पहुँच गई हूँ स्टूडियो में, आप भी अपने अपने रेडियो सेट के करीब हो जाइए। अच्छे अच्छे गीतों से आपका मनोरंजन करने के लिए पहुँच चुकी हूँ मैं। आज के प्रोग्राम में भी कुछ न्यूज़ हेडलाइंस होंगी, चिंतन भी होगा प्रोग्राम के नेक्स्ट आवर में, लेकिन शुरू करते हैं हम बैक टू बैक दो गीतों के साथ।
1: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
2: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
3: TravelHub.
2: At all protected.
1: Leica. Leica Radio Network.

0: The Ravi Sharma Show on Leica Gold.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
2: भाई अगर आपको SBI UK के ज़रिए पैसे ट्रांसफ़र कराने हैं इंडिया में कहीं भी तो देर मत कीजिएगा, बहुत अच्छा रेट आपको मिल रहा है और आप जल्दी से पैसे एक्सचेंज करा भी सकते हैं। और आज आपको रेट क्या मिल रहा है, 128 रुपीस एंड 5 पैसास अगेंस्ट 1 स्टर्लिंग पाउंड। और किस तरह से ट्रांसफ़र करेंगे, यू कैन गो टू द ब्रांच, यू कैन गो ऑनलाइन और बाय यूजिंग द यूनो SBI UK ऐप ऑन योर टेलीफोन।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: भाई वैसे तो ये गाना बैक टू बैक का था, पर किस तरह से जंप हो गया, कोई बात नहीं।

0: आपके साथ भी ऐसा ज़रूर होता होगा, बहुत से लोग मिलते हैं आपको आते जाते, लेकिन उनमें से कुछ लोग होते हैं जो आपके दिल में बस जाते हैं, जिनसे आपकी दोस्ती हो जाती है, जिनसे वेल हो सकता है प्यार भी हो जाए, लेकिन बहुत सी बार हम इतने लोगों को मिलते हैं और बस देखते हैं, दूर से स्माइल भी हो जाती है, लेकिन उन्हें हम थोड़ी देर बाद भूल भी जाते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है, इफ़ यू हैव जस्ट जॉइन मी, वेलकम ऑन बोर्ड, और मैं कोशिश करूंगी अच्छे अच्छे गीतों से आपका साथ निभाती रहूं। तो आइए बढ़ते हैं इन मैसेजेस की तरफ, और मैसेजेस के उस पार एक और बहुत प्यारा सा गीत किशोरदा की आवाज़ में।
1: ये है लाइका गोल्ड, 10:35 AM।
2: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
3: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
2: ये तो बताओ, कोई पता चला?
4: गुरु गुरु, इस 19 जून को द प्रिंस रीजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश, क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
2: तो शुभकामनाएं, देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
5: शीघ्र शीघ्र।
4: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रीजेंट होटल ऑन 19 जून। टू बुक कॉल 0208-514-5400, बुक ऑनलाइन एट इवेंटब्राइट।
6: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड।

0: Disha, supreme extra long grain basmati rice. Indulge with Disha. Available at quality food stores and all independent stores nationwide.
1: Hillaro ane Umbro jevi acclaimed Gujarati films na national award winning director Abhishek Shah par ek var leine aavya che ek emotional comedy.
2: Atamar to jindagi che ke film ni vaarta.
1: Ek you heart ji kai feel kartu nahotu.
3: Ari vaarta adhuri che bhai.
1: But one beat and everything changed.
4: Tamaru hriday दबकारो चुकी जाए।
1: दबकारो स्टारिंग देवेन भोजानी अने आर्जव देसाई।
5: लोकेशन अहीं ना करेला अहीं ज भोगवाना छे।
1: इन सिनेमास नहीं आयू।
6: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एज रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में। रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई इवेंटिम अपोलो हैमर स्मिथ। हमारे राम, बुक योर टिकट्स नाउ, विजिट www.eventimapolo.co.uk। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक आर रेडियो।
7: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
8: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
7: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
8: गारंटेड
7: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
8: 0208574 8410।
7: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
9: विल नहीं है ये रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन विल्स और प्रोबेट को फास्ट और आसान बनाते हैं। अभी कॉल करें 0208907244। अपनी फैमिली को सिक्योर करें। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन 0208907244।
10: हल्के फुल्के मोमेंट्स को और भी खास बनाए जैमिन स्नैक्स के हल्के फुल्के पफ बाइट्स के साथ।
11: राइस कॉर्न से बने लाइट और क्वालिटी में बेस्ट जैमिन पफ बाइट्स, जो है बारबेक्यू, लेमन चिली, मस्त मसाला और मैक्सिकन सालसा जैसे फ्लेवर्स में अवेलेबल।
10: जैमिन पफ बाइट्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
12: Every child deserves a childhood, but many children in India are forced to leave school far too early. Cry UK is helping children stay in school and build brighter futures. Just £25 could help two children continue their education. Visit www.ukcry.org and help to make a difference.
13: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEVESAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and motichur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
6: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
14: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: और भाई अब ज़रा न्यूज़ की तरफ भी चलेंगे और बता दें आपको कि क्या चल रहा है विश्व भर में। कुछ दुनिया के कुछ इंडिया की खबर आप तक पहुंचा दें। और सबसे पहली खबर है क्या वो जानिए, अमेरिका और ईरान के बीच होमर्स जल डमरू मध्य का चरणबद्ध तरीके से खोलने पर सहमति बनी है। इसके तहत अमरीकी नौसैनिक नाकाबंदी में ढील दी जाएगी और फंसे जहाज़ों को जल्द ही निकलने की वहाँ से अनुमति मिल सकती है। इस कदम में दुनिया भर के तेल आपूर्ति, समुद्री व्यापार और ऊर्जा बाजार को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अरब्स के मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये समझौता गुरुवार को यानी आज दोनों देशों के बीच बड़े तनाव के बाद हुआ है। अमेरिका ईरान संघर्ष की शुरुआत में ईरान ने होमुज को बंद कर दिया था, उनके जो जल डमरू मध्य थे उन्हें बंद कर दिया था, जिसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आई थी। ट्रंप प्रशासन ने फिर तेज़ किया डिपोर्टेशन, धीमा फैसला देने वाले इमिग्रेशन जजों को हटाने से जुटा अमेरिकी न्याय विभाग। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने देश में फिर से डिपोर्टेशन प्रक्रिया को तेज़ कर दिया है और इसके लिए अमेरिका का न्याय विभाग इसे इमिग्रेशन जजों को उनके पद से हटा रहा है जो फैसला सुनाने में तथाकथित देरी कर रहे हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के प्रशासन बहुत तेज़ी से चल रहे हैं और एक बात एक्शन अटॉर्नी जनरल डॉट ब्लैच ने कही और ट्रंप प्रशासन इमिग्रेशन अदालतों को नया रूप देना चाहता है। 37 लाख लंबित मामलों के बैकलॉग को कम करके बड़े पैमाने पर डिपोर्टेशन हो सकती है। शुभेंद्र अधिकारी इंडिया की खबर है। केपीए की हत्या, पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम सामने आने के बाद बुधवार को रात शुभेंद्र अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या कर दी गई और इस मामले की जांच के लिए अब बिठाई गई है SIT बिठाई गई है और टीम को IG लेवल के अधिकारी लीड करेंगे। पश्चिमी बंगाल में नई सरकार की शपथ ग्रहण से पहले राजनीतिक हिंसा तेज़ हो गई है और बुधवार को रात नॉर्थ 24 परगाना में शुभेंद्र अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना से बंगाल की सियासत गर्मा गई है और पुलिस अधिकारी जो हैं वो भी हमलावरों की तलाश में जुटे हुए हैं। और बॉलीवुड से एक खबर आई है कि अक्षय कुमार बैक फिल्में करते रहे और हाल ही में उनका एक आई ऑपरेशन हुआ है और ये कहा गया है कि वो काफ़ी तकलीफ में हैं, जिसके बाद उन्होंने सर्जरी कराने का फैसला किया और फिलहाल एक्टर कुछ दिनों के लिए आराम कर रहे हैं। ये थी कुछ खबरें इधर उधर की। और चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और उन सभी अपने साथियों का थैंक्स करना चाहती हूँ जिन्होंने बड़े प्यार से मुझ तक मैसेजेस भेजे हैं। थैंक यू एवर सो मच। इसी तरह से अपने मैसेजेस मुझ तक पहुँचाते रहिएगा। बहुत से गीत हैं और बड़ी चॉइस है, लेकिन कभी कभी सरिता को भी समझ नहीं आती है कि कौन सा गीत प्रोग्राम में शामिल किया जाए। वैसे ये गीत बहुत देर हो गई है, हमने सुना नहीं है और कोका नूडल्स वाले ये गाना आप तक पहुँचा रहे हैं। कौन सा? From the film Ek Tujhe Ke Liye, कौन सा हो सकता है सोचिए।
0: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
1: बहुत ही प्यारा सा गीत था एक दूजे के लिए, फिल्म रति अग्निहोत्री और कमल हसन ने इस फिल्म में काम किया था एंड गीत आपने सुना लता जी की आवाज़ में। और जो मेरे साथ ही बड़े प्यार से मैसेजेस लिख रहे हैं और कह रहे हैं वी आर वेटिंग फॉर द चिंतन, यस चिंतन विल बी हियर, यस चिंतन सुनाऊंगी मैं 11 बजे की खबरों के एकदम बाद। और अब कुछ मैसेजेस हैं, उसके बाद एक और बड़ा प्यारा सा गीत है एंड जो अभी तो नहीं न्यूज़ के करीब है हम, पर बहुत जल्दी न्यूज़ के करीब भी पहुंचने वाले हैं। अब मुझे आपने ये बताना है कि किस जरिए से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं। वी आर अवेलेबल ऑन लाइका गोल्ड, जो है लाइका रेडियो नेटवर्क के जरिए मेरी आवाज़ आप तक पहुँची है, पर मैं इस वक्त लाइका गोल्ड के स्टूडियो में हूँ। अवेलेबल ऑन 10:35 AM DAB अलेक्सा गूगल होम एंड लाइका गोल्ड .com। सो जिस भी जरिए से आप सुन रहे हैं मुझे अपने होने का एहसास दिलाइए। और जब मैसेजेस लिखते हैं तो ये भी बताइए कि कौन से एरिया में हैं आप।
2: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: ये है
4: Laika Gold
5: TravelHubWorld.com। कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
6: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
7: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
6: विजिट TravelHubWorld.com।
8: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
9: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
10: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
9: High appreciation.
10: In Dubai.
11: Every morning, a shopkeeper opens his doors.
12: Lights on, shutters up, staff ready.
11: But today's customers don't start on the high street.
12: They start on their phones, scrolling Instagram, watching TikTok, searching Google.
11: And if your business isn't there, they don't walk past your shop.
12: They walk into your competitors.
11: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit HeartyHanks.com before your competitors do.
12: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
13: Chelmsford is now open. Tariq Halal has arrived.
12: 100% halal meat, prepared with care every day.
13: From premium cuts to everyday essentials, quality you can trust is always on the counter.
12: And don't forget, get your favourite frozen items too.
13: Find Tariq Halal inside Chelmsford Bus Station Parade, right by the bus stop. Tariq Halal.
12: There is only one.
1: Sade Dasve Guru Govind Singh Ji Maharaj da Pavitr Janam Sthan Takhat Shri Hariminder Ji Patna Sahib de लाइव दर्शन देखो सिर्फ जी पंजाबी स्काई 769 ते वर्जिन मीडिया 811 ते रोज सवेरे 3 बजे तो 8 बजे तक सिर्फ जी पंजाबी ते ही।
14: Skylord Cruise and Holidays, we are cruise specialists,
12: bringing you incredible value and unforgettable luxury cruises worldwide.
14: Call today on 01923-883-100
12: or go to skylordcruiseandholidays.com.
14: Book with confidence.
12: We're Atoll protected.
3: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
7: This Eid, skip the queues and save with Umbala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEVESAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and moti chur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
2: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Like a Goon. Officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagoon.com. Leica Radio, finalist at the Radio Academy ARIA's 2026.

0: This is Like a Gold. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: Right, a pound in your pocket can get you today. Indian rupees 128.45, Pakistani rupees 380.20, Bangladeshi taka 167.35, Afghanis 86.20, Sri Lankan rupee 437.17, US dollars 1.36 and Kenyan shillings 175.95.
0: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica Gold.
0: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: And gold karita is worth market mein £111.91 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
3: Leica Gold.
0: India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
1: जी हाँ, IPL के मैचेस आजकल चल रहे हैं. कल मैच था सनराइजर्स हैदराबाद एंड पंजाब किंग्स के बीच एंड दे सनराइजर्स हैदराबाद दे वन बाय 33 रन्स. एंड आज 3 बजे मैच शुरू होने वाला है और ये मैच लखनऊ में होगा, लखनऊ सुपर जायंट्स एंड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में. सो देखना मत भूलिए और हम आपको अपडेट देते रहेंगे.
0: India cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
3: Ye hai
2: Leica Gold.
3: Leica Gold.
1: जी हाँ, आप लाइका रेडियो नेटवर्क के ज़रिए हम ये आवाज़ आप तक पहुंच रही है और मैं सरिता आपका साथ निभा रही हूँ. प्रोग्राम की इस आवर का आखिरी गीत, यस, फ्रॉम द फिल्म हाथी मेरे साथी सुनेंगे आप आफ्टर दीज मैसेजेस.
4: द वेट इज नाउ ओवर. द किंग ऑफ मेलोडी Kumar Sanu live in concert. For one night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
5: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
4: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
5: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasan.
4: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education, Embryo Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Leica Radio.
6: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागासन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
4: स्टेप इनटू द न्यू ग्रैंड शोरूम of Gajal's Couture, Southall.
5: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
4: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
5: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
4: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
7: ट्रेवल इन स्टाइल का वादा है, कहीं भी घूम कर आइए. फ्लाइट्स और हॉलीडेज की बेस्ट प्राइसेस के लिए हमारे पास आइए. अपने अर्ली बर्ड डिस्काउंट के लिए नंबर मिलाइए 02089540077. दैट्स 02089540077. आपके मन की तसल्ली के लिए ये फुल्ली बॉन्डेड है.
8: ट्रेवल इन स्टाइल,
9: ट्रेवल इन स्टाइल,
8: ट्रेवल इन स्टाइल.
10: मॉम, आई एम आउटसाइड. यस, लिटरली जस्ट लैंडेड.
11: वेट, वेट, वेट, वेट, हाउ आर यू कॉलिंग ऑलरेडी? आई एम स्टिल सर्चिंग फॉर वाईफाई.
10: ओह, आई एम on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
8: And you didn't pay those massive roaming charges?
10: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
9: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
11: Location, location, location.
12: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
11: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
12: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
11: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
12: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
11: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
12: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
11: High appreciation.
12: In Dubai.
13: Mantra Holidays wishes you and your family a holiday season filled with joy, laughter and unforgettable moments. As you celebrate, start planning your next adventure with us. Visit www.mantraholidays.co.uk or call 0203-773-633 now. APTA bonded.
14: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
15: भक्ति प्रेम और समर्पण की एक दिव्य कहानी।
16: मत जाओ काना, क्यों जा रहे हो?
17: क्योंकि नियति मेरे बस में नहीं।
15: देखिए कृष्णा, राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा की अमर लीला।
17: वचन दिया था राधा को निभाना पड़ेगा।
15: कृष्णावतारम इन सिनेमाज नियर यू।
17: ये बंसी तुम्हारी राधा और मेरा नाम भी।
18: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
19: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy! Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
0: This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0207 132 1458 or sales@leicamedia.co.uk. Wake up to Kajal on breakfast at 6am and drive back with Sandy Shah at 4pm. Leica Gold. The Ravi Sharma Show on Leica Gold.

कभी कभी जिंदगी में खुशियों की सबसे ऊंची छत पर हम खड़े होते हैं और वहां खड़े होते हुए भी किसी रिश्ते की नींव अचानक पैरों तले से खिसक जाती है। शहनाइयों की गूंज, फूलों की खुशबू, मेहमानों की रौनक, सब कुछ एक पल में फीका पड़ जाता है जब घर की सबसे बड़ी ताकत, सबसे गहरी ममता और सबसे सच्चा रिश्ता, एक माँ और बेटे का रिश्ता, किसी गलतफहमी की पहली ही हवा से कांपने लगे। आज की कहानी सिर्फ एक बहू, एक सास या एक बेटे की नहीं है। ये कहानी है उस माँ की जो अपनी पूरी उम्र बेटे के लिए जीती है और फिर एक दिन उसी बेटे की एक नज़र, एक सवाल उसके दिल को ऐसे तोड़ देता है कि आवाज़ भी नहीं निकलती। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ममता, भरोसे और टूटे हुए दिल की सच्चाई से भरी कहानी।

0: शादी के गीतों की गूंज अभी भी घर की दीवारों पर जैसे मुस्कुरा रही थी। 3 दिन की थकान, मेहमानों की रौनक, रस्मों की भाग दौड़, सब के बीच आज दीनदयाल जी के चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। उनके चेहरे पर एक ऐसा सुकून था जो सिर्फ एक पिता ही समझ सकता है। उनका इकलौता बेटा अभिनव आज अपना घर बसा रहा था। उन्होंने बिस्तर पर लेटते ही आंखें बंद की और नींद ने उन्हें अपनी गोद में समेट लिया। उस घर की असली धड़कन थी सुमन जी। उनके लिए आराम अभी भी दूर था। सुमन, वो माँ जिसने अपनी जिंदगी का हर मौसम सिर्फ एक ही सोच के साथ जिया था, मेरी बहू आएगी तो मैं उसे बेटी बनाकर रखूंगी। थकी हुई थी हाँ, लेकिन दिल में एक ठंडी सी मीठी सी हलचल थी। रसोई में खड़े खड़े वो दूध को उबलते हुए देख रही थी, पर मन अतीत में कहीं भटक रहा था। वो रातें जब अभिनव को बुखार होता था और वो खुद गीले में सोकर सूखे में उसे सुलाती थी, वो दिन जब खुद पुरानी साड़ी पहनती थी लेकिन बेटे के लिए नए कपड़े ज़रूर लेकर आती थी, वो पल जब उन्होंने सोचा था बुढ़ापे में हमारा सहारा यही बेटा होगा और उसकी पत्नी मेरी बेटी। आज उनका 25 साल का पुराना सपना पूरा हुआ था। बहू घर में आ गई थी और मैं अब उसे अपनी बेटी बनाकर रखूंगी, ऐसा ही सोचा सुमन ने। यही सोचते हुए उन्होंने केसर वाला दूध चढ़ाया, न्यूली मैरिड के लिए नाश्ता तैयार किया, प्यार से, दुलार से, उम्मीदों से। और इधर अभिनव और मानसी अपने सजे हुए कमरे में आराम कर रहे थे। रात भर की रस्मों और सफ़र के बाद दोनों बेहद थके हुए थे। कुछ देर पहले ही सुमन उनके कमरे में गई थी।
1: चिंतन चिंतन
0: कुछ देर पहले ही सुमन उनके कमरे में गई थी उनके कपड़े सलीके से रखने के लिए, बहू का माथा चूमने और उसे आराम करने की हिदायत देने। उनके दिल में एक ठंडक थी, अब बुढ़ापे में एक बेटी का साथ मिल गया। रसोई में काम करते हुए सुमन मुस्कुरा रही थी। उसे याद आया जब अभिनव छोटा था और आज वही बेटा अपना घर बसा रहा था। ये सोचकर उसका दिल भर आया। तभी पीछे से कदमों की आहट हुई। सुमन ने मुड़कर देखा, अभिनव खड़ा था लेकिन उसके चेहरे पर कुछ था जो उन्हें चुप किया। एक बेचैनी, एक झिझक, एक अनकहा आरोप। अरे बेटा, तू उठ गया? मानसी क्या सो रही है? मैं क्या चाय नाश्ता बना दूं, तुम्हारे कमरे में ले आऊं? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। अभिनव धीरे धीरे अंदर आया। उसकी आवाज़ धीमी थी लेकिन उसमें एक कठोरता थी। माँ, मानसी कह रही है कि उसका लाल पर्स कहीं मिल नहीं रहा है, उसमें कैश भी था और 2 सोने की अंगूठियां थी। आप कमरे में आई थी क्या? आपने कहीं रख दिया? सुमन ठिठक गई। लाल पर्स? नहीं बेटा, मैंने तो बस कपड़े अलमारी में रखे थे। क्यों, क्या हुआ? कमरे में सिर्फ आप ही आई थी माँ, तो उसने सोचा शायद आपने उसे कहीं रख दिया है, इसलिए पूछने आया हूँ। ये सवाल नहीं था, ये एक तीर था जो सीधे उस माँ की आत्मा में जाकर लगा। ये शब्द नहीं थे, ये किसी पिघले हुए शीशे की तरह थे जिसने अपने बेटे के लिए अपनी पूरी जिंदगी खपा दी थी। वही बेटा आज सवाल करने आ गया। मानसी का शक पेनफुल था, दुखद था, लेकिन उससे भी ज्यादा दर्दनाक था अभिनव का अपनी माँ पर भरोसा ना करना। रसोई में उबलते हुए दूध की आवाज जैसे अचानक थम गई, समय रुक गया, हवा भारी हो गई। क्या मतलब है तेरा अभिनव? उनकी आवाज कांप रही थी। मानसी को आए हुए 4 घंटे भी नहीं हुए और उसे लगता है कि उसकी सास ने उसके गहने चुरा लिए, उसके पैसे चुरा लिए। अभिनव झुंझलाया, माँ चुराने की बात नहीं है, वो बस पूछ रही है, आप बात को बढ़ा रही हैं, अगर आपने रखा है तो दे दीजिए ना।

सुमन जी को लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर पहाड़ रख दिया हो। दुख मानसी के शक का नहीं था, वो तो पराई थी, उसे क्या पता इस घर की ममता का इतिहास। दर्द था तो सिर्फ अभिनव का, जिस बेटे को उन्होंने अपने प्यार से पाला था, जिसके लिए अपनी हर इच्छा कुर्बान की थी, जिसे सही गलत की पहचान सिखाई थी, वही बेटा आज अपनी पत्नी के चंद शब्दों पर, अपनी माँ की नीयत पर सवाल उठा रहा था। क्या वो इतना नहीं कह सकता था, मानसी मेरी माँ ऐसा कभी नहीं कर सकती। क्या एक माँ का 25 साल का प्यार एक लड़की के 4 घंटे के साथ ही हल्का पड़ गया। उनके हाथ से छलनी गिर गई, पैर कांपने लगे और वो रसोई के फर्श पर बैठ गई टूट कर, और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर भी बेटे से कहा, ठीक है बेटा, मैं ढूंढती हूँ, तू जा, मैं ढूंढती हूँ ना, उन्होंने किसी तरह कह दिया। अभिनव चला गया बिना ये समझे कि वो अपनी माँ के दिल में कैसी दरार छोड़ गया, और वो वहीं रसोई के फर्श पर बैठ गई टूट कर चुपचाप बिना किसी शोर के, क्योंकि माँ का दिल टूटता है तो आवाज नहीं आती। सो अब

बाद बेटे को जानना जरूरी है कि माँ की इज्जत पत्नी की इज्जत जितनी ही है। क्या अभिनव को अपनी पत्नी को समझाना चाहिए था या अपनी माँ से सवाल करना चाहिए था? क्या एक माँ की नियति सिर्फ देना ही है और बदले में शक और परायापन? क्या ये एक सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग थी? क्या ये अभिनव के कहने का ढंग था? बहुत से सवाल हैं, आपसे जानना चाहूंगी। क्योंकि कहा तो यही जाता है ना कि माँ का मन ममता का और प्यार का मंदिर होता है।

0: ये था आज का चिंतन। कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब माँ की सारी उम्र की ममता, सारी कुर्बानियाँ, सारी चुप्पियाँ एक ही सवाल से टूट जाती हैं और उस टूटने की आवाज़ दुनिया नहीं सुनती, लेकिन एक माँ का दिल हमेशा सुनता है। सुमन की वही चुप्पी, वही दर्द अब इस गीत में उतर कर आया था। एक माँ के नाम जिसका प्यार कभी कम नहीं होता, चाहे दुनिया उसे समझे या ना समझे। कहते रिश्ते खून से नहीं, भरोसे से चलते हैं, और अगर घर में नई कोई ईंट जोड़ते हैं हम, तो पुरानी नींव हिलने लग जाती है तो हम एक नई ईंट जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो दोष ईंट का नहीं होता, नींव को संभालने वालों का होता है। हर बेटे को याद रखना चाहिए कि पत्नी सम्मान है, लेकिन माँ अस्तित्व है। क्या सच में शादी के बाद बेटे बदल जाते हैं और फिर हम उन्हें समझाना भूल जाते हैं कि माँ की इज्जत पत्नी की इज्जत जितनी ही ज़रूरी है? क्या अभिनव को अपनी पत्नी को समझाना चाहिए था या अपनी माँ से सवाल करना चाहिए था? क्या एक माँ की नियति सिर्फ देना है और बदले में शक, ताने और परायापन? बहुत सारे सवाल, लेकिन ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग। कृष्णा जी ने लिखकर भेजा अभी, अभिनव तो अपनी वाइफ को समझाना चाहिए था। माँ इज़ ऑलवेज राइट, सॉन्ग इज़ ब्यूटिफुल, थैंक यू। बहुत सारे मैसेजेस हैं, लेकिन मैंने सिर्फ आपका सामने देखा है मैसेज और मैंने पढ़ दिया। कृष्णा जी थैंक यू सो मच, बहुत सारे मैसेजेस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये था आज का चिंतन। अगर इसके बारे में कमेंट लिखना चाहते हैं कि अभिनव को क्या करना चाहिए था, तो ज़रूर बताइएगा।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: भाई SBI UK वालों के जरिए पैसे अगर ट्रांसफर करना चाहते हैं तो काम बड़ा आसान है। You can go to transfer the money via branch online or by using the Yono SBI UK mobile app. और आज बहुत अच्छा रेट मिल रहा है, 128 rupees and 5 paisas against 1 British sterling pound, and it depends कि कितने पैसे ट्रांसफर आप कर रहे हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Yeah, like a

0: जी हाँ, लाइका गोल के ज़रिए ही हमारी मुलाकात है और आप मेरा साथ दे रहे हैं जहाँ भी बैठे सुन रहे हैं। उम्मीद करती हूँ प्रोग्राम पसंद आ रहा है आपको। और अब एक सूचना आप तक पहुँचानी है, कॉलिंग ऑल किशोर कुमार फैंस, अ स्पेशल म्यूजिकल नाइट फीचरिंग केतन इंद्रानी, संजय एंड 515 band, and it takes place on Friday 19th June at the Prince Regent's Hotel, Chigwell, Essex. में ये हो रहा है प्रोग्राम। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर है Laika Gold.
1: ये है Laika Gold. Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Derry Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit derryvalley.net.

0: basmati rice.
1: Disha, supreme extra long grain basmati rice. Indulge with Disha.
2: Available at Falcon stores and all independent stores nationwide.
3: Royal announcement by Royal Chai. Chai is loved by all and so is coffee. Here's presenting a brand new coffee latte in three different and delectable concoctions. Enjoy the royal blend and aroma of coffee in masala, cardamom and garak flavors. Taste the coffee latte with a quirk by Royal Chai. Now available at all major retailers.
4: हर क्रंची बाइट में एक खास एथनिक स्वाद, हर फ्रायम शेप में है वो बचपन की याद।
5: स्नैक टाइम हंगर को बनाए और भी टेस्टी विद जेमिन्स फ्रायम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड यम्मीस्ट फ्लेवर्स लाइक लेमन चिली मिंट, मंचूरियन, मसाला, पेरी पेरी और शेजवान विद बेस्ट क्वालिटी एंड सेम एथनिक टेस्ट।
4: जेमिन फ्रायम्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
6: साढ़े दसवें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का पवित्र जन्म स्थान तख्त श्री हरिमंदर जी पटना साहिब दे लाइव दर्शन देखो सिर्फ जी पंजाबी स्काई 769 ते वर्जिन मीडिया 811 ते रोज सवेरे 3 बजे तो 8 बजे तक सिर्फ जी पंजाबी ते ही।
7: Every child deserves a childhood, but many children in India are forced to leave school far too early. Cry UK is helping children stay in school and build brighter futures. Just £25 could help 2 children continue their education. Visit www.ukcry.org and help to make a difference.
8: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
1: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code Early Eid Saver online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and motichur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
9: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Like a Goon. लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो laikagold.com पे।
10: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: क्या कर रहा हूँ?
1: भैया छोड़ो ना।
0: क्यों छोड़ूं?
1: प्लीज समझो ना।
0: क्या समझूं?
1: वो लोग देख रहे हैं।
0: अरे तो देखने दो और जलेंगे।
1: अच्छा तो ये बात है, तो मैं और पास आऊं?
0: आओ ना।

0: जानो की कसम ओ सनम
1: दिल तेरा है मेरी तेरी जानो ओ दिल
2: भाई। मैंने ये तो सुना है कि लोग एक दूसरे की कसम खा लेते हैं, बालों की कसम, तेरी आंखों की कसम, तेरी बाहों की कसम। ऐसी कसम कभी आपने भी खाई है या नहीं खाई है बता दीजिएगा मुझे। दो गीत सुने आपने बैक टू बैक, एंड मैं यही कहूँगी कि वेलकम टू द लास्ट एंड द फाइनल आवर। जिन्होंने मिस किए पिछले दो घंटे का प्रोग्राम, तो बहुत कुछ मिस किया, आज का चिंतन भी मिस किया। और इस आवर के पहले दो गाने आपने सुन लिए। दाग फिल्म का गीत चुना था मैंने, दाग के सारे गाने बड़े अच्छे थे। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी का संगीत था, आनंद बख्शी साहब ने लिखे थे गीत, राजेश खन्ना थे, शर्मिला टैगोर थे इस फिल्म में, एंड साथ में कौन थी, राखी थी। बहुत खूबसूरत फिल्म थी, अगर नहीं देखी जब कभी भी मौका मिले तो ज़रूर देखिएगा ये फिल्म। और दूसरा गीत बॉम्बे टू गोवा से चुना था मैंने, लता मंगेशकर एंड किशोर दा की आवाज़ों में गाया हुआ ये गीत आपने पसंद किया। आपके ढेर सारे लंबी लिस्ट है व्हाट्सएप मैसेजेस की, सब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया।

0: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Bhi Manoj Kumar ki film Pehchan se chuna tha maine is geet ko aur ummeed karti hu aapne pasand bhi kiya aur ab ek khaas jankari hai jo aap sab tak pahunchana chahungi aur wo ye hai kya jaan lijiyega. हाँ भाई, ये तो सभी जानते हैं कि लाइका गोली सुन रहे हैं आप लाइका रेडियो नेटवर्क के जरिए. आतिफ असलम का शो होने जा रहा है 14 जून को संडे, एंड लाइका रेडियो नेटवर्क इस एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर. अगर टिकट्स नहीं खरीदी हैं अभी तक तो खरीदिएगा. ये O2 में होने वाला है शो. टिकट्स अवेलेबल एट AXS एंड द वेन्यू एज वेल. एंड रागासन जो हैं वो हमारे हॉस्पिटैलिटी ब्रांड हैं हमारे साथ, एंड लाइका रेडियो नेटवर्क हैज कन्फर्म्ड अ पार्टनरशिप विद द प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी ब्रांड रागासन. डिटेल्स हमारी आप लाइका रेडियो .com से ले सकते हैं.
0: ये है लाइका गोल्ड.
3: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.
2: Another beautiful number, Zameer. ये था फिल्म का नाम, 1975 की फिल्म, किशोर दा की आवाज़ में गाई हुआ गीत आपके लिए.

0: तो बहुत मिलते हैं और हम रुकना भी चाहते हैं, लेकिन जाने का वक्त भी तो सामने है। यस, जाना है कुछ ही देर में। आप इसी तरह से प्रोग्राम सुनते रहेंगे। बाली जी आ रहे हैं नेक्स्ट, लेकिन मैं अभी नहीं जा रही हूँ, अभी तो कुछ और बातें भी करनी है।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. Like a Go.
2: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
3: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: विजिट TravelHubWorld.com.
4: Chelmsford is now open. Tariq Halal has arrived.
5: 100% halal meat prepared with care every day.
4: From premium cuts to everyday essentials, quality you can trust is always on the counter.
5: And don't forget, get your favorite frozen items too.
4: Find Tariq Halal inside Chelmsford Bus Station Parade, right by the bus stop. Tariq Halal.
5: There is only one.
1: Step into the new grand showroom of Gajul's Couture, Southall.
4: At 159 The Broadway, Southall. UB1 1LR.
1: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
4: plus beautiful jewelry and accessories, find everything under one roof. Gajul's Couture, now open 7 days a week.
1: Gajul's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
6: Mantra Holidays wishes you and your family a holiday season filled with joy, laughter and unforgettable moments. As you celebrate, start planning your next adventure with us. Visit www.mantraholidays.co.uk or call 0203-773-633 now. APTA bonded.
7: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
4: Every child deserves a childhood, but many children in India are forced to leave school far too early. Cry UK is helping children stay in school and build brighter futures. Just £25 could help 2 children continue their education. Visit www.ukcry.org and help to make a difference.
8: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। T&Cs अप्लाई।
4: सबरंग आर्ट्स प्रेजेंट्स रमझट इन एसोसिएशन विद लाइका रेडियो नेटवर्क ऑन Saturday 30th of May at 7 p.m. Join us at the Millennium Center, Waldingham School, CR37YA for a joyful journey into the heart of Gujarati music and dance. Timeless Garba, cherished folk songs and stunning live dance performances. An evening where music unites and traditions shine. Book now at ticketsource.co.uk or call 0797686944.
1: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
9: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com। टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: इस गीत का खून करने जा रही है सरिता, क्योंकि जाने का वक्त है और आपसे विदा भी लेनी है। और मेरे बाद आ रहे हैं बाली जी। बाली जी का आप साथ देंगे माइक्रोफोन के इस तरफ से मुझे इजाजत। बाय बाय, हैव अ लवली डे।
1: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
2: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
1: ये तो बताओ, कोई पता चला?
3: गुरु गुरु, इस 19 जून को द प्रिंस रीजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
4: तो शुभकामनाएं, देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
1: शीघ्र शीघ्र।
3: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रीजेंट होटल ऑन 19 जून। टू बुक कॉल 0208-514-5400। बुक ऑनलाइन एट Eventbrite।
5: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड।
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Daniel. Prime location.
6: High appreciation.
7: In Dubai.
8: Hellaro અને ઉમરો જેવી acclaimed Gujarati films ના National Award winning director Abhishek Shah ફરી એકવાર લઈને આવ્યા છે એક emotional comedy.
9: તમારું તો જિંદગી છે કે film ની વાર્તા.
8: એક એવું heart જે કઈ feel કરતું નહોતું, but one beat and everything changed.
10: તમારું હૃદય ધબકારો ચૂકી જાય છે.
8: ધબકારો starring દેવેન ભોજાની અને આર્જવ દેસાઈ in cinemas near you.
11: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
12: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208-900-2323 or visit startours.co.uk.
13: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEVESAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and motichur laddus, don't wait. The offer ends on the 10th of May.
14: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
15: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
14: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
15: गारंटेड
14: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
15: फोन 02085748410।
14: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
16: Up next, Bally Brumbat with Gold Afternoons on Leica Gold. The Ravi Sharma Show on Leica Gold.

0: बोलिया
1: कोई ना,
0: रखी मैं कुफर तोलिया
1: कोई ना,
0: रखी मैं जहर कोलिया
1: कोई ना, भाई कोई ना, भाई कोई ना।

0: across London. This is Bally Brambat on Like a Gold.
1: Hoya Kurban. वो आंखें थी दिलबर की या नरगिस मस्त।

वाह वाह, हंगामा हो गया, हंगामा हो गया। पहला तो भंगड़ा हो गया थोड़ा जा, मैं झूठ बोलिया कोई ना, लेकिन जो मैं कहूँगा वो सच सच ही कहूँगा। इस शो में तीन घंटा मैं हूँ बाली ब्रह्म भट्ट, ऑन लाइक अ गोल्ड विद गोल्ड आफ्टरनून्स ऑन 1035 मीडियम वेव DAB एलेक्सा गूगल होम एंड लाइक अ गोल्ड .com। एंड ब्रिज जी, यस यस यस, मुझे मालूम नहीं था कि सरिता जी ने एक घंटा मेरा हैंडल किया था जब मैं ऑफ था उस दिन। सो सरिता जी, थैंक यू वेरी मच, यू बीन वेरी काइंड इन हैंडलिंग द फर्स्ट आवर। आई गॉट टोल्ड दिस आफ्टरनून व्हेन आई अराइव्ड। एंड नॉट ओनली दैट, आगे जाते हुए क्या होने वाला है, अभी आपने जो दो गाने सुने उसमें मैं एक ट्रिब्यूट करने वाला हूँ। For 2 hours, you gonna get such a treat, such a treat. आपके messages मुझे बताएंगे बाद में, लेकिन it's about a lyricist, a composer, a choreographer, an actor. Actor, यानी के he had very light eyes. मुझे लगता है greenish होंगी, मैं तो black and white photo देखते हैं उनके, लेकिन must have greenish eyes and a handsome looking person. Who was also a choreographer, not very successful as a choreographer, and then he learned how to compose music and then ended up with being a lyricist, and he was very well known for his patriotic songs. Abhi itna hi kehke main zara aage badhta hu, I'll continue with the tribute. Third hour mein main ek competition karne wala hu. Competition ek mera yaar hai जिसका नाम है त्रिलोक शर्मा। उसको मैं कुछ तकरीबन 40 साल से मैं जानता हूँ। इसकी खासियत मतलब कि एकदम बाखूबी से मुकेश जी के गाने ऐसे गाता है जैसे कि आंख बंद करके सुनो तो मुकेश जी ही सुनाई दे। लेकिन रफ़ी जी के भी गाने, और इतना वर्सेटाइल आर्टिस्ट है वो त्रिलोक शर्मा, इतने सालों से सारी जनता जानती है। एंड ही इज़ एक्चुअली परफॉर्मिंग in a show, and I am going to be hosting the show. It's going to be compared by me on this particular Saturday, 9th May 2026. Abhi Trilok ki khasiyat ye hai ke kuch 500,000 gaane sab

याद है ना. मैं दंग रह जाता हूँ. मैं जब भी पूछता हूँ तो वो ऐसे ही ऊपर हाथ करके, मतलब कि ये ऊपर वाले की देन है. और उनके साथ एक ऐसी धुआंधार सिंगर हु हैज़ कम ऑल द वे सो मैनी ईयर्स अगो फ्रॉम मॉरिशियस, अ फ्रेंच इंग्लिश एंड हिंदी स्पीकिंग वंडरफुल लेडी एंड अ ब्यूटिफुल सिंगर, ब्यूटिफुल एंड अ वंडरफुल वेलवेटी वॉइस, दैट इज वेदा. So Veda and Trilok Sharma are doing this particular show on Saturday 9th May 2026 at Alperton Community School. You know, Alperton station se niklo aur left mudo to wo school aati hai, Alperton Community School, Ealing Road, Wembley, HAO 4PW. And tickets are of course available from Videorama as well, sabse famous. एंड दूसरे नंबर्स भी सारे हैं. लेकिन हैट्स ऑफ एंड सैल्यूटेशंस टू भरत शाह. भरत शाह जो हमारे जिगरी दोस्त हैं, ही इज़ एक्चुअली प्रेजेंटिंग दिस पर्टिकुलर शो, त्रिलोक शर्मा एंड वेदा इन भूली बिसरी यादें. इट्स अ लाइव ऑर्केस्ट्रा बाय भवीन मेहता. धुआंधार म्यूजिशन सब है, सबको जानता हूँ मैं. मित्तल है, ओ हो मित्तल पुरोहित, दैट्स राइट. हमारे वंडरफुल लिसनर्स चारू एंड दिलीप के बेटे मित्तल पुरोहित, वेरी फेमस एंड धुआंधार म्यूजिशियन. फरनाज, देन इवेंस, देन वी गॉट भाविन, ऑफ कोर्स भाविन बिकॉज उसका ऑर्केस्ट्रा है, एंड साउंड बाय अमर. यस, अमर पा जी मिलना होगा जरूरी. एंड This is the show that is happening in Alperton Community School. Tickets are £20, including dinner. You can't believe it. An ample parking. Jo log wahan aaye, unko to malum hi hai. So the doors open at 5 p.m. Then the dinner will be served at 6 p.m. And the show starts at 8 p.m. Aram se baithke jamo tame and khana khao. एंड सारे गाने सुनो. मैंने जो लिस्ट देखा गानों का, ओ माय गॉड, इट्स अ रियल ट्रीट. एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट बिकॉज आई एम होस्टिंग द पर्टिकुलर शो. एंड द स्पॉन्सर्स, वी हैव नेम्स हियर, टेस्ट ऑफ केनिया, देन मसाला मार्ट, देयर इज SBI UK एंड Leica Gold Radio. That's right. So it's going to be a lot of fun. And in the third hour, if I get a chance, I'll get Veda coming and joining us. And tomorrow, I'm doing the same competition and two people will get tickets, a pair. So a pair today and a pair tomorrow. Not the fruit, but P-A-I-R. Okay. So Trilok Sharma and Veda. So Veda might come over at around 3 o'clock and कुछ बातें करेंगे हम उनके साथ. दो लाइन भी सुन देंगे, अगर मूड में हुई तो गा भी देगी, पर बड़ा मजा आएगा. सो कॉम्पिटिशन इन द थर्ड आवर, जुड़े रहिएगा. अब मैं आपको ट्रिब्यूट की बात करता हूँ. प्रेम धवन, हु वॉज बोर्न ऑन 13th of June 1923 इन अम्बाला, पंजाब. मैंने पंजाब तो बोल दिया, लेकिन इट्स एक्चुअली नाउ हरियाणा, अम्बाला. And his father was a jail superintendent for the British government. And he died at the age of 77. That's 7th of May 2001. This was only a month, 30 plus days, 38 days before his 78th birthday. His wife Uma he left behind, and then daughter Shyamli. Now the story goes like this. You know, Prem did his college studies in Lahore, during which he was involved with the activities of the Communist Party of India. And then career-wise, dekha jaye to 23 saal ki umr mein, saal tha 1946, he started as an assistant of composer Khwaja Khurshid Anwar in Khwaja Ahmad Abbas's film Aaj Aur Kal. To wo 1946 ki baat hai. He then moved to the great Nagari, Bombay Nagariya, to join IPTA. He joined IPTA. IPTA kya hota hai? Indian People's Theatre Association, formed on 25th of May 1943, and they promoted themes related to the Indian

0: freedom struggle. The goal was to bring cultural awakening amongst the people of India. In 1943, its president was Prasanna and secretary was Tanveer Akhtar. So, inko join karke, inko fayda hua. He benefited. How did he benefit? We are talking about Prem Dhawan. Prem Dhawan benefited because he learnt classical music under the renowned Ravi Shankar, the sitar player. Ravi Shankar ne inko sikhaya classical music. Abhi that was his career wise, dekha jaye to sangeet kaise inhone praapt kiya. Abhi debut as a lyricist for the film Dharti Ke Lal. Hindi version of ek film thi Apurva Sago Dharargal. And uska jo translation hua Hindi mein, to wo film ke lyrics inhone likhi. Then a string of films, kaisi kaisi film, Aram, Tarana, आसमान, शोला और शबनम, काबुलीवाला जिसका आपने गाना सुना अभी, या कुर्बान, हाँ वो, और उसकी लिरिक्स उन्होंने लिखी, एक फूल दो माली, वाह, आपने वो गाना सुना, ऐ मेरे प्यारे वतन, 1961 की काबुलीवाला का गाना, वो भी इन्होंने ही लिखा, एंड पूरब और पश्चिम गीत फिल्म पवित्र पापी मेरा नाम जोकर में एक गाना है उनका 10 लाख फिर शबनम एंड देन देयर वाज जबक एंड वचन वचन वाज द फिल्म रवि म्यूजिक डायरेक्टर रवि की पहली फिल्म थी इट वाज अ डेब्यू फिल्म एंड देन एज अ कंपोजर प्रेम धवन ही कंपोज्ड सॉन्ग्स ऑफ फिल्म शहीद मनोज कुमार की एंड देन नानक दुखिया सब संसार जब वहाँ उनको नेशनल अवार्ड मिला मैंने स्पेलिंग्स देखे नेशनल अवार्ड की लिस्ट में तो उनका उनकी लिरिक्स लिखने का जो नाम लिखा हुआ था बेस्ट लिरिक्स वो नाम गलत छापा था इन्होंने प्रेम क्या लिखा था धवल ऐसा कुछ लिखा था इट्स एक्चुअली धवन 19th नेशनल फिल्म अवार्ड्स आप लिस्ट देखना उसमें नाम गलत छापा है पवित्र पापी का संगीत इन्होंने दिया शहीद फिल्म का इन्होंने दिया आधी रात के बाद 65 की फिल्म का म्यूजिक इन्होंने दिया एंड देन लवली सॉन्ग्स ऐ मेरे प्यार ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन शहीद फिल्म का गाना एंड मेरा रंग दे बसंती चोला ओए वो भी गाना इन्होंने ही कंपोज किया As an actor, he acted in La Jawab film and Goonj Uthi Shehnai. Do filmon mein acting bhi kiya inhone. As a choreographer, I mean several films thi. Ye film jo debut of Ravi, Vachan film, uska choreography kiya. Vakt, Dhool Ka Phool, Goonj Uthi Shehnai, Do Phool, Naya Daur, Phir Shehnai, Do Bigha Zameen, Arzu, Shishmal, aisi filmon ke. Lekin he wasn't very successful as a choreographer. The sad part is, His career faded towards the 80s and did not have any notable contribution. And he died of cardiac arrest on 7th May 2001. Let's listen to songs of Prem Dhawan. After the Kumar Sanu song next.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling today could get you up to 128.05 Indian rupees. Remember to make your transfers via branch, online or by using the Yono SBI UK mobile app.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gold Afternoons with Bali Brambert. Proudly sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India. Bringing authentic flavors to your table every day. Find Gemin at Asian stores near you.
3: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश हिंदी गुजराती मराठी तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208922334 24 Our line.
4: At At Skylord Cruise and Holidays, we are cruise specialists,
5: bringing you incredible value and unforgettable luxury cruises worldwide.
4: Call today on 01923 883 100,
5: or go to skylordcruiseandholidays.com.
4: Book with confidence.
5: We're Atoll protected.
1: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com. Step into the new grand showroom of Gargels Couture, Southall.
2: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
1: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
2: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Gargels Couture, now open 7 days a week.
1: Gargels Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
6: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location,
6: high appreciation
7: in Dubai.
8: Ek badhiya kadak garma garam chai mil jaye to aaye haaye maza aa jaye.
9: Are samjho, ho gaya. Royal chai hai na, ab bhi ban jayegi. Sirf packet kholo aur garam pani mein ghol lo. Chai taiyar, wo bhi royal taste ke saath. Royal chai, jhatpat, kahin bhi, kabhi bhi.
10: ਸਾਡੇ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਈਵ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕਾਈ 769 ਤੇ ਵਰਜਿਨ ਮੀਡੀਆ 811 ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੀ
11: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel, and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy. Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
12: This is Leica Gold.
0: Wow, wow, wow. Good announcement here. Because बहुत कम टिकट्स रह गई है. किसकी टिकट्स आप पूछ रहे हो? अरे कुमार सानू. कुमार सानू लाइव इन कॉन्सर्ट. द किंग ऑफ मेलोडीज. ही रिटर्न्स टू द यूके फॉर वन नाइट ओनली एंड कैच द सुपरस्टार सिंगर एट द प्रेस्टीजियस रॉयल अल्बर्ट हॉल ऑन बैंक हॉलिडे मंडे 25th ऑफ मई. नाउ गेट योर टिकट्स फ्रॉम द वेन्यू दैट इज रॉयल अल्बर्ट हॉल. Or Ticketmaster, exclusive radio partners, Leica Radio Network. Yo!

0: to Cardinal on Breakfast at 6 a.m. and drive back with Sandy Shah at 4 p.m. Like a gold. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
1: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From Dal Bhat, Pav Bhaji and Biryani to Namkeen, Khakra, Chikki, Potato Chips, Mango Pulp, Pani Puri and Sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
2: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल TravelHub 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
3: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
3: विजिट TravelHubWorld.com.
4: Two businesses,
5: same town,
4: same service.
5: One appears on page one of Google,
4: the other doesn't.
5: Guess which one gets the customer?
4: The truth is brutal.
5: The first page of Google gets the business.
4: Everyone else gets what's left.
5: So here's the real question.
4: When your customers search for what you sell, do they find you?
5: Visit HeartyHanks.com and stop letting Google choose your competitors.
4: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
6: लंदन एंटरटेनमेंट दी सब तो वड्डी रात आ रही है. फोर पिलर्स एंटरटेनमेंट्स लिमिटेड प्रेजेंस एबीपीडी अवार्ड्स यूके 2026. लाइव परफॉर्मेंसेस बाय नवीन कुंद्रा, मंजीत बॉबी, निकी सेठी ते होर जबरदस्त आर्टिस्ट्स. 9th मई शाम 6 बजे द सेंटर बैंकवेटिंग सुइट साउथ हॉल. फॉर टिकट्स कॉल मंजीत बमरा एट 7956300367. एबीपीडी अवार्ड्स यूके 2026 एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क. Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.40% on non-withdrawable fixed deposits. Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
7: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप,
8: टेबल पे सिर्फ एक हीरो, जेमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स.
7: मसालेदार मसाला, टैंगी टोमेटो, सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर, ऑल इन जेमिन्स पोटैटो चिप्स.
8: जेमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स, देसी स्वैग इन एवरी बैग.
9: For gold, silver and platinum bars you can trust, visit buybullion24.co.uk. Competitive prices, secure online buying and reliable service across the UK. For more details, WhatsApp on 0737522418. Choose buybullion24.co.uk today.
10: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com. T&Cs apply.
11: भक्ति, प्रेम और समर्पण की एक दिव्य कहानी.
12: अच्छा काना, क्यों जा रहे हो?
13: क्योंकि नियति मेरे बस में नहीं.
11: देखिए कृष्णा, राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा की अमर लीला.
13: वचन दिया था राधा को निभाना पड़ेगा.
11: कृष्णा अवतारम इन सिनेमाज नियर यू.
13: ये बंसी तुम्हारी राधा और मेरा नाम भी.
14: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEEDSAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and moti chur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
0: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
2: Leica Gold. लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर. एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो laikagold.com पे.
0: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
15: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: संगीत खयाम का और प्रेम धवन की लिरिक्स. वी आर डूइंग अ ट्रिब्यूट ऑफ प्रेम धवन.
1: Radio 90s. Leica Radio Punjabi. Leica Gold 2. Now available on the Leica Radio mobile app and Alexa.
0: ये गाना उन्होंने लिखा ही नहीं लेकिन कंपोज भी किया. सुनिएगा प्रेम धवन.

वाओ वाओ, व्हाट अ सॉन्ग! शहीद फिल्म का 1965, क्या कंपोजिशन! एंड यू आर राइट शकीला जी, आपने जैसे कहा कि बाली जी, व्हेन यू आर टेलिंग देयर स्टोरी आई एम थिंकिंग हाउ डिड दे वर्क सो हार्ड, एंड आई मीन ऑल द लिरिसिस्ट्स, कंपोजर्स वगैरह वगैरह, एंड द रिजल्ट्स दैट केम आउट अनफॉरगेटेबल. वी आर स्टिल एंजॉयिंग इन दिस प्रेजेंट डे एंड एज. यू आर सो राइट. And this is also one of those item songs. सब चटपटे गाने मैंने सुनाए. आशा भोसले और महेंद्र कपूर जी ने पूरब और पश्चिम में ये गाना गाया था. And lyrics were by प्रेम धवन. Next hour में स्लो गाने. Oh,

अभी दोनों गाने आपने सुने, कैसे सिमिलर मीनिंग वाइज, तेरी दुनिया से दूर चले, तेरी दुनिया से दूर चले हो के मजबूर, वो पहला गाना फिल्म जबक्का 1961 में, जब चित्रगुप्त ने संगीत दिया था और प्रेम धवन ने लिरिक्स लिखी थी। फिर 1970 में, 9 साल बाद, प्रेम धवन गॉट अ मूवी टू कंपोज म्यूजिक डायरेक्शन के लिए, पवित्र पापी। उसमें उन्होंने सेम तरह से लिखा लेकिन थोड़ी सी लिरिक्स कैसे चेंज की, तेरी दुनिया से होके मजबूर, उसमें था तेरी दुनिया से दूर चले, तेरी दुनिया से दूर चले होके मजबूर, सो तेरी दुनिया से दूर चले होके मजबूर, और यहाँ पे तेरी दुनिया से होके मजबूर चला, व्हाटएवर। अभी मैं गाने लगूंगा तो दो चार मैसेजेस आएंगे, प्लीज़ गाओ मत। तो चित्रगुप्त का संगीत था और यहाँ पे फिल्म पवित्र पापी का म्यूजिक बाय प्रेम धवन एंड लिरिक्स बाय प्रेम धवन। कितने खूबसूरत दो गाने। एंड वी आर डूइंग अ ट्रिब्यूट ऑफ प्रेम धवन, जिनके पिताजी वॉज अ जेल सुपरिंटेंडेंट फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और बेटे को बड़ा पोएट्री में शौक था, फिल्मों में शौक था, डांसिंग का शौक था, सो ही बिकेम अ लिरिसिस्ट, अ कंपोजर, अ कोरियोग्राफर एंड एन एक्टर बिकॉज ही वॉज गुड लुकिंग टू। उनको एक अवार्ड मिला था 1970 में, दैट वॉज द पद्मश्री। एंड 1970 में वो तो मिला था, लेकिन नेशनल फिल्म अवार्ड उनको मिला था फॉर द बेस्ट लिरिक्स इन 1971 की जो अवार्ड सेरेमनी थी, 19th नेशनल अवार्ड की सेरेमनी, नानक दुखिया सब संसार, पंजाबी। और इनके लिखने का ढंग आपने नोटिस किया होगा कि मैंने स्टार्टिंग से ही जब गाने इनके सुनाए तो एक गाना था, मैं कोई झूठ बोलिया कोई ना भई, मैं कुफड़ तो लिया कोई ना भई कोई ना, सो वो गाना ही हैड दैट पंजाबी ढंग इन इट। एंड देन दूसरा गाना जो था एक कौन सा था, लड़ी रे लड़ी तुझसे आँख जो लड़ी, जगजीत कौर का गाया हुआ, जो खयाम साहब ने म्यूज़िक दिया था, उसमें भी पंजाबी ढंग था, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला ओए, वो भी पंजाबी ढंग का। एंड देन पंजाबी स्टाइल की कॉमेडी एंड लिरिक्स इन ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो उनका ये अंदाज बड़ा अच्छा था। लेकिन जब सीरियस गाने लिखते थे, पेट्रियोटिक सॉन्ग्स, आपने ये दो गाने सुने, तेरी दुनिया से होके मजबूर और तेरी दुनिया से दूर चले होके मजबूर और तेरी दुनिया से होके मजबूर। अभी आई कीप ऑन गोइंग राउंड एंड राउंड इन सर्कल्स विद दैट वन, लेट मी गेट आउट ऑफ दैट लूप। प्रेम धवन वी आर टॉकिंग अबाउट, एंड द नेक्स्ट जो गाने आएंगे, ऐ मेरे प्यारे वतन काबुली वाला का गाना जो है, एंड देन किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, जो रवि ने गाया और इन्होंने लिरिक्स लिखी, एक फूल दो माली की लिरिक्स उनकी थी, एंड सीने में सुलगते हैं अरमान, माय गॉड, तलत महमूद का गाना आ रहा है लता मंगेशकर जी के साथ, सो मतलब पंजाबी ढंग लेकिन सीरियस गाने भी और पेट्रियोटिक गाने भी, कितना टैलेंटेड आर्टिस्ट, और 1980s में काम नहीं था इनके पास, इट जस्ट फेडेड आउट, सो नाइंसाफी हुई है इनके साथ, लेकिन लेट्स सेलिब्रेट एंड रिमेंबर हिम टुडे, 7th May 2001 ही पास्ड अवे, एंड व्हेन ही पास्ड अवे इट इज़ हिज 25th डेथ एनिवर्सरी, चाहे 50th हो 25th हो कोई भी हो, हम इनको कभी नहीं भूलेंगे और इनके गाने हम सुनाते ही रहेंगे।

0: basmati rice.
1: Disha, supreme extra long grain basmati rice. Indulge with Disha. Available at quality food stores and all independent stores nationwide.
2: Mum, I'm outside.
3: Yes, literally just landed.
4: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
3: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
4: And you didn't pay those massive roaming charges?
3: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
5: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
6: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
7: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
6: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
7: गारंटेड
6: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
7: फोन 02085748410।
6: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
8: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
9: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
8: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women.
9: Plus beautiful jewellery and accessories. Find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
8: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear. All in one destination.
10: हल्के फुल्के मोमेंट्स को और भी खास बनाएं जैमिन स्नैक्स के हल्के फुल्के पफ बाइट्स के साथ।
11: राइस कॉर्न से बने लाइट और क्वालिटी में बेस्ट जैमिन पफ बाइट्स, जो है बारबेक्यू, लेमन चिली, मस्त मसाला और मैक्सिकन साल्सा जैसे फ्लेवर्स में अवेलेबल।
10: जैमिन पफ बाइट्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
12: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
13: भक्ति, प्रेम और समर्पण की एक दिव्य कहानी।
14: मत जाओ काना, क्यों जा रहे हो?
15: क्योंकि नियति मेरे बस में नहीं।
13: देखिए कृष्णा, राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा की अमर लीला।
15: वचन दिया था राधा को निभाना पड़ेगा।
13: कृष्णा अवतारम इन सिनेमाज नियर यू।
15: ये बंसी तुम्हारी राधा और मेरा नाम भी।
13: मंत्रा हॉलीडेज विशेस यू एंड योर फैमिली अ हॉलीडे सीजन फिल्ड विद जॉय, लाफ्टर एंड अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स। एज यू सेलिब्रेट, स्टार्ट प्लानिंग योर नेक्स्ट एडवेंचर विद अस। विजिट www.mantraholidays.co.uk और कॉल 0203 77

0: What an amazing young voice of Lata Mangeshkar with Talat Mahmood. और हमारे दोस्त है अरुण चेंडुरनीकर, who has played with Talat Mahmood all around the world, and he's enjoying the show as well.
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: अनिल बिश्वास का संगीत एंड प्रेम धवन की लिरिक्स थी वो. अब रवि का संगीत और रवि जी की आवाज एंड लिरिक्स. एक फूल दो माली फिल्म का प्रेम धवन की लिरिक्स. वी आर डूइंग अ ट्रिब्यूट ऑफ 25th डेथ एनिवर्सरी ऑफ प्रेम धवन.
1: ये है लाइका गोल्ड टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोको नूडल्स.
0: रवि जी कह रहे हैं किस्मत के खेल निराले मेरे भैया. ब्यूटिफुली संग एंड ब्यूटिफुली रिटन बाय प्रेम धवन.

क्या फीलिंग्स है। फिल्म है प्रेम का सागर, 1961 की फिल्म, जहां पे प्रेम धवन ने ये लिरिक्स लिखी। आज भी दुनिया सुनती है मुकेश जी की आवाज़ को, रवि का संगीत, लेकिन कोई नहीं जानता कि लिरिक्स किसने लिखी, गाने को पैदा किसने किया। इन्होंने लिरिक्स लिखकर रवि को दी और रवि ने कंपोज किया। गाने को जिसने जन्म दिया उसको हम भूल जाते हैं, ये हमारी एक गलती है, यू नो। सो लेट्स ऑलवेज रिमेंबर सच वंडरफुल पीपल लाइक प्रेम धवन।

0: इसमें सिर्फ वही वही का कमाल है। उन्होंने अगर चाहा था तो लिख सकते थे, तुझको मैं जान गई जाने मन, तुझको मैं जान गई जाने मन, पर वो बात नहीं है। वही वही उसमें नशा है। वही
1: वही वही वही वही
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Each currency equivalent to one sterling pound. US dollars 1.3622. Indian rupees 128.25. Pakistani rupees 379.69. Afghanis 85.86. And Kenyan shillings 175.94.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKER. Download LemFi now.

0: मेरी नजर,
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सार्थक। माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स।
2: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
3: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
2: ये तो बताओ, कोई पता चला?
4: गुरु गुरु, इस 19 जून को द प्रिंस रीजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश, क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
2: साधु, तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
5: शीघ्र शीघ्र।
4: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रीजेंट होटल ऑन 19 जून। टू बुक कॉल 0208-514-5400। बुक ऑनलाइन एट इवेंटब्राइट।
6: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड।
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube, prime location,
7: high appreciation
8: in Dubai.

मैं आपको फिल्म काबुली वाला का गाना जो मन्ना दा ने गाया था, पेट्रियोटिक गाना, दैट वॉज रिटन बाय प्रेम धवन एंड सलील चौधरी का संगीत. दिस वॉज हिज टैलेंट ऑफ राइटिंग पेट्रियोटिक सॉन्ग्स. सुनिएगा.

0: कितना मजा आ रहा ना।
1: वाह वाह वाह। एंड ये गाना जो कुमार सानू का जो गाया संजीवनी के साथ, इतना खूबसूरत गाना है और संजीवनी ने निभाया कुमार सानू के साथ, फिल्म करीब का गाना 1998 का। एंड आई होप यू आर एंजॉयिंग योरसेल्व्स बिकॉज मैं हूँ बाली ब्रह्मभट ऑन लाइका गोल्ड विद गोल्ड आफ्टरनून्स ऑन 1035 मीडियम वेव DAB एलेक्सा गूगल होम एंड laikagold.com। एंड लक्ष्मी जी, आपने कुछ मुझे मैसेज भेजा है लेकिन आपके स्पेलिंग्स बड़े हॉरिबल है। ऑनेस्टली इट्स वेरी इरिटेटिंग व्हेन यू डोंट स्पेल करेक्टली, तो पता नहीं चलता कि मैसेज क्या है, एग्जैक्टली क्या बोलना चाहते हो आप, मुझे समझ नहीं पड़ रही है। सो प्लीज़ गेट योर स्पेलिंग्स करेक्टेड एंड देन यू सेंड इट टू मी एंड आई लव टू रिप्लाई टू यू, यू नो। सो आगे जाते हुए विजय गुनोवा जी, आपने बड़ी प्यारी बात कही आज। एंड आपने कहा कि दुनिया भर में जहाँ भी हम बसते हैं, दुनिया भर में कनाडा हो, USA हो, मॉरिशस हो, या अफ्रीका हो, या UK हो, जब हम ऐसे गाने सुनते हैं जैसे वो काबुलीवाला का गाना जो था ऐ मेरे प्यारे वतन, तो सबके दिलों में एक ही फीलिंग होती है, यू नो, द मिसिंग ऑफ द रूट्स दैट वी कम फ्रॉम। यस, चिट्ठी आई है, वो गाना भी सेम फीलिंग्स आती है। सम ऑफ द वंडरफुल राइटिंग्स बाय वंडरफुल पीपल, सो थैंक यू फॉर योर मैसेजेस एंड इट्स वंडरफुल टू हैव सेंसिबल मैसेजेस हियर एंड आई एंजॉय इट वेरी मच। सम पीपल गेट इरिटेटेड वेरी क्विकली, बट देन यू गॉट टू अंडरस्टैंड एवरीबडी इज़ अ ह्यूमन बींग इंक्लूडिंग मी। अगर मैं 100% होता तो मैं इस रेडियो स्टेशन पे नहीं होता, आई वुड हैव बीन समवेयर एल्स। वी ऑल मेक मिस्टेक्स एंड कभी कभी उम्र का तकाजा होता है, जो कभी कुछ भी होता है, सबकी डायलैक्ट्स

0: उर्दू सिखाई जाती, तो मेरा काफिया और रतीफ रदीफ और जो भी मेरी बोली है वो कुछ ज़्यादा बेहतर हो सकती थी, लेकिन हम कोशिश करते हैं। जी हाँ, हम पूरी कोशिश करते हैं, तो आप समझा करो और कभी कभी मैसेजेस ऐसे मत भेजा करो जिससे कोई सामने वाला हर्ट हो जाए, है ना। तो सोच के बोला करो, क्योंकि आप में भी कमियां होंगी एंड मुझ में भी कमियां होंगी। सो très bien, merci beaucoup, je parle un peu de français, mais je vous comprends. आगे जाते हुए रेट्स देखेंगे और गाने भी, और आशा पारेख का एक गाना जो है जो इन्होंने जॉय मुखर्जी के साथ गाया था, तो जॉय मुखर्जी के साथ जो गाना गाया था उसमें वो लोग स्टेज के ऊपर गाते हैं और सामने दोनों के पास माइक है, लेकिन गाते गाते वो डायरेक्टर भूल गया कि इनको कहना है कि माइक के अंदर मुंह डाल के गाओ, क्योंकि पब्लिक को ऐसा लगना चाहिए कि रियली गा रहे हो, लेकिन ये लोग तो घूम रहे हैं एक फुट दो फुट दूर माइक से, और झुकने की बात आती है तो माइक से एकदम झुक गए जॉय मुखर्जी, और माइक से इतने दूर, और रफ़ी साहब की इतनी खूबसूरत आवाज़ सुनाई दे रही है, सो इट डजेंट लुक नेचुरल। ऐसा एक गाना है फिर वही दिल लाया हूँ का, बड़ा मजा आएगा सुनने का, सुनते रहिएगा।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: And looking at the rates here, £1 in British sterling today could get you up to 128.05 Indian rupees. Remember to make your transfers via branch, online or by using the Yono SBI UK mobile app.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Ye hai Laika Gold.
3: Gold Afternoons.
4: Gold Afternoons.
3: Proudly sponsored by Jaimin Foods, the authentic taste of India. Dal bhat, pav bhaji, biryani. Bas pet sambhar jo, kyunki cravings badhne wali hai.
5: हिल्लारो अने उम्रो जेवी अक्लेम्ड गुजराती फिल्म्स ना नेशनल एवॉर्ड विनिंग डायरेक्टर अभिषेक शाह फरी एक वार लेने आव्या छे एक इमोशनल कॉमेडी।
6: तमारो तो जिंदगी छे के फिल्म नी वार्ता।
5: एक यू हार्ट जी कई फील करतु नतु।
6: मारी वार्ता अधूरी छे भाई।
5: बट वन बीट एंड एवरीथिंग चेंज्ड।
7: तमारो हृदय धबकारो चूकी जाय छे।
5: धबकारो स्टारिंग देवेन भोजानी अने आर्जव देसाई।
8: लोकेशन अहीना करेला अहीं ज भोगवाना छे।
5: इन सिनेमास नहीं आयू।
9: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, like our radio.
10: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
11: No more worries for me or you.
12: Southall Travel, at all protected. Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries, and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
13: Mantra Holidays wishes you and your family a holiday season filled with joy, laughter and unforgettable moments. As you celebrate, start planning your next adventure with us. Visit www.mantraholidays.co.uk or call 0203-773-633 now. APTA bonded.
14: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
15: Chelmsford is now

0: कहा जबकि खुद कर दिया हो मोहब्बत का इजहार अपनी जुबान से।
1: वाओ
0: ब्यूटिफुल सॉन्ग।
1: ओह माय गॉड, आपने मैं मेरी लाइन गाने वाला था और आपने ले ली मेरी लाइन। द पब्लिक एवरीबडी इज क्लैपिंग नाउ एंड यू नो व्हाट योर प्रोनाउंसिएशंस यू नो खुद द वे यू पुट द उर्दू अंदाज में जो यू नो एंड यू आर फ्रॉम मॉरिशियस फ्रेंच स्पीकिंग and amazing the way you caught on with the lyrics and everything and the pronunciation and all. Hats off to you. Promise you.
0: Thank you so much.
1: One more one-liner, please.
0: One more one-liner. Okay. There's another beautiful song that I love.

0: जैसे
1: सेट गो माइक्रोवेव फूड कंटेनर
2: हर मौके पर काम ये आए घर घर खुशियां लाए
1: जहां जिंदगी वहां सेट गो माइक्रोवेव फूड कंटेनर
3: डिस्कवर द बेस्ट ऑफ पोर्चुगल विद अ फैंटास्टिक लिस्बन एंड पोर्टो ट्विन सिटी सेंटर ब्रेक विद स्काईलॉर्ड फ्लाई फ्रॉम द यूके एंड स्पेंड 3 नाइट्स एक्सप्लोरिंग वाइब्रेंट लिस्बन विद इट्स हिस्टोरिक स्ट्रीट्स ट्राम्स एंड रिवरसाइड व्यूज देन ट्रैवल बाय ट्रेन टू ब्यूटीफुल पोर्टो फॉर 3 मोर नाइट्स डिस्कवरिंग इट्स फेमस वाइन सेलर्स एंड चार्मिंग ओल्ड टाउन स्काईलॉर्ड प्राइसेस स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £339 पर पर्सन फॉर मल्टी सेंटर सिटी ब्रेक पैकेजेस विद अ डिफरेंस सी स्काईलॉर्ड क्रूज एंड holidays.com
4: call 01923 883100 at all protected
5: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन
6: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
7: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 02039635. 757 Greens by Danube Prime location
6: High appreciation
7: In Dubai
8: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture Southall
9: At 159 The Broadway Southall UB1 1LR
8: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women
9: plus beautiful jewelry and accessories find everything under one roof Gajal's Couture now open 7 days a week
8: Gajal's Couture Southall Style, elegance and occasion wear. All in one destination.
10: Search is changing.
11: Customers aren't just using Google anymore.
10: They're asking AI.
11: And AI doesn't show 10 websites. It recommends one answer.
10: One business, one recommendation.
11: So, when someone asks AI, who's the best company for this?
10: Will your business be the answer?
11: Or the one that got left behind?
10: The future of search has already started.
11: Have you? Visit HartyHanks.com and make sure AI recommends you.
10: Harty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
12: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
13: Visit mantraholidays.co.uk or call 02037736333 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
14: ट्रेवल इन स्टाइल का वादा है कहीं भी घूम कर आइए फ्लाइट्स और हॉलीडेज की बेस्ट प्राइसेस के लिए हमारे पास आइए अपने अर्ली बर्ड डिस्काउंट के लिए नंबर मिलाइए 02089540077 दैट्स 02089540077 आपके मन की तसल्ली के लिए ये फुल्ली बॉन्डेड है
15: ट्रेवल इन स्टाइल ट्रेवल इन स्टाइल ट्रेवल इन स्टाइल
16: फ्रॉम ब्रेथटेकिंग वेडिंग ज्वेलरी टू द फाइनेस्ट डायमंड रिंग्स डू कम इन एंड सी अस एट मीनार ज्वेलर्स टू क्रिएट द परफेक्ट symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
17: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEEDSAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and moti jewel laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
18: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: into the sunshine on Leica Radio Network. travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रैवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
1: ट्रैवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड
1: विजिट travelhubworld.com
2: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
3: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
2: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women.
3: Plus beautiful jewellery and accessories. Find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
2: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.

0: experienced tour operators for air, coach and cruise holidays. So now, whenever you plan for a holiday, plan with Serene Holidays.
1: Call Deepthi Pandya today.
0: 0116-266-2481. For more information, log on to sereneholidays.co.uk.
2: भक्ति प्रेम और समर्पण की एक दिव्य कहानी।
3: मत जाओ काना, क्यों जा रहे हो?
4: क्योंकि नियति मेरे बस में नहीं।
2: देखिए कृष्णा, राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा की अमर लीला।
4: वचन दिया था राधा को निभाना पड़ेगा।
2: कृष्णावतारम इन सिनेमाज नियर यू।
4: ये बंसी तुम्हारी राधा और मेरा नाम भी।
5: अब लंदन बैठे मिलेगा एशियन एथनिक स्वाद इंस्टेंटली थैंक्स टू जैमिन फूड्स।
6: जस्ट एड हॉट वाटर, वेट फॉर 5 मिनट्स एंड टेस्ट दी एथनिक रेसिपीज लाइक साबुदाना खिचड़ी, शीरा, पोहा, भाजी, वेज बिरयानी, दाल भात आर रेडी टू सर्व ऑन योर प्लेट।
5: जीरो मेस, नो स्ट्रेस, सेम एथनिक टेस्ट विद जैमिन फूड्स।
7: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
8: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEVESAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and moti chur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
9: Travel in style ka vaada hai. Kahin bhi ghoom kar aaiye. Flights aur holidays ki best prices ke liye hamare paas aaiye. Apne early bird discount ke liye number milaiye. 0208-954-0077. That's 0208-954-0077. Aapki man ki tasalli ke liye ye fully bonded hai.
10: Travel in style.
11: Travel in style.
10: Travel in style.
12: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Leica Radio. Finalist at the Radio Academy Arias 2026.

0: basmati rice.
1: Disha, supreme extra long grain basmati rice. Indulge with Disha.
2: Available at Falcon stores and all independent stores nationwide.
3: Chelmsford is now open. Tariq Halal has arrived.
4: 100% halal meat prepared with care every day.
3: From premium cuts to everyday essentials, quality you can trust is always on the counter.
4: And don't forget, get your favorite frozen items too.
3: Find Tariq Halal inside Chelmsford bus station parade, right by the bus stop. Tariq Halal.
4: There is only one.
5: विल नहीं है, ये रिज आपको नहीं लेना चाहिए. कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन विल्स और प्रोबेट को फास्ट और आसान बनाते हैं. अभी कॉल करें 0208-907-2444. अपनी फैमिली को सिक्योर करें. कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन 0208-907-2444.
6: For gold, silver and platinum bars you can trust, visit buybullion24.co.uk. Competitive prices, secure online buying and reliable service across the UK. For more details, WhatsApp on 0737522418. Choose buybullion24.co.uk today.
7: आ सितंबर पेरिस में इतिहास लिखाई रहे छे.
8: BAPS मंदिर नो ओपनिंग अने स्टार टूर्स तमने लई जाई रहे छे आ पवित्र यात्रा पर.
7: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर्स.
8: फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली अने जर्मनी साथे
7: दर्शन पण अने यूरोप पण.
8: सीट्स जल्दी भराई रही छे, आज ज बुक करो स्टार टूर साथे.
7: कॉल 0208900-2323. द स्टार टूर्स,
8: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन.
1: दिस ईद स्किप द क्यूज एंड सेव विद अंबाला. प्री ऑर्डर बिफोर द 10th ऑफ मे एंड एंजॉय 20% ऑफ योर ऑर्डर. यूज कोड अर्ली ईद सेवर ऑनलाइन और इन स्टोर. फ्रॉम स्टनिंग गिफ्ट टिन्स टू रसमलाई एंड मोतीचूर लड्डूज, डोंट वेट, द ऑफर एंड्स ऑन द 10th ऑफ मे.
9: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. On this week's Leica Extra podcast, Weddings and Beyond with Donny Brasco.
10: It was these two creators and they had a wedding and they only had about 20 people and they were able to do individual introductions of all their guests to introduce them to other guests and how much they meant to them in their life. And I just thought that was so nice. I mean, if I did that for 300 people, they'd be there for a week.
9: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms.
11: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. 28 साल का भरोसा, हर साल हजारों happy travelers. इसलिए families के लिए Star Tours experience अलग होता है. Visit StarTours.co.uk.
12: I love this one.

0: Radio Network, across London, Manchester and the Midlands.
1: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
2: Atif Aslam, live in the UK.
1: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
2: Book your tickets now at AXS.
1: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
2: Exclusive radio partner, Leica Radio.
3: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन.
2: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
4: Visit mantraholidays.co.uk or call 02037736333 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra? Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344, a 24-hour our line.
5: वीजा प्रॉब्लम? इंतजार मत करें. हर डिले आपको महंगा पड़ सकता है. कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन असाइलम केसेस, अपील्स, स्किल्ड वर्कर वीजा, स्पॉन्सरशिप लाइसेंस और रिफ्यूजल पर फास्ट काम करते हैं. अभी कॉल करें 02089072444. दैट्स 02089072444.
1: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEEDSAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and motichur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
2: Like a gold par har raat ki yahi reet. Purane magar sada bahar geet.

0: Gold Nights. Leica Gold on 10:35 AM. CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith, Hamari Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Leica Radio.
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
1: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
2: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
1: High appreciation.
2: In Dubai.
3: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
4: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
3: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
4: गारंटेड
3: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
4: फोन 02085748410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
6: भक्ति, प्रेम और समर्पण की एक दिव्य कहानी।
7: जाओ काना, क्यों जा रहे हो?
8: क्योंकि नियति मेरे बस में नहीं।
6: देखिए कृष्णा, राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा की अमर लीला।
8: वचन दिया था राधा को निभाना पड़ेगा।
6: कृष्णावतारम इन सिनेमाज नियर यू।
8: ये बंसी तुम्हारी राधा और मेरा नाम भी।
9: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
0: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk.
10: Bollywood classics ka saath, sirf Leica Gold par.

0: biggest classics throughout the night, non-stop on Gold Nights. Like a Gold on 10:35 AM.
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
2: फोन 02085748410।
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।

0: Experienced tour operators for air, coach and cruise holidays. So now, whenever you plan for a holiday, plan with Serene Holidays.
1: Call Deepthi Pandya today.
0: 0116-266-2481. For more information, log on to sereneholidays.co.uk.
2: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
3: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEEDSAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and motichur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
4: Packed for the trip? Gifts? Passport?
5: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
4: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
5: Simzy?
4: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
6: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com.
7: T's and C's apply.
8: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
9: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk।
10: क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर।

0: bringing to you the best classics all night. Like a Gold on 10:35 AM.
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
2: फोन 02085748410।
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
4: Atif Aslam live in the UK.
3: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
4: Book your tickets now at AXS.
3: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
4: Exclusive radio partner, Leica Radio.
5: Mum, I'm outside.
6: Yes, literally just landed.
7: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
6: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
7: And you didn't pay those massive roaming charges?
6: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
8: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
9: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? Leica रेडियो और Leica गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@leicaradio.com।
10: रात भर न थमे न रुके, क्लासिक नगमे आपके अपने Leica गोल्ड पर।